0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। हाय हेलो। हाय हेलो।
0: Thank you.